0: लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे सोने की राम कसम लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी आओ
1: लक्ष्मी राधा के रूप में आते हुए लाज ना आए मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख ली हंसू नहीं हंसो नहीं संसार का बाहर थालों की देवी ममता का

0: जो जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है।
1: पंडाला की बेटी नहीं, मैं गांव की बेटी, पर मेरी इज्जत है, तेरी इज्जत है, सारे गांव की इज्जत है। बाकी लगन करो, मैं जिम्मेवार हूं, मेरा बच्चू ऐसा नहीं करेगा, मेरा बच्चू ऐसा नहीं करेगा।